0: बाय नेट को बाय वन गिफ्ट वन फ्री ऑफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया जड़ान को लागी गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागी एक महीना फ्री इंटरनेट बाय नेट अब सब कनेक्टेड
1: मध्य पश्चिम चाइन चेक यति बेला बिहानको 10 बजेको छ।

0: बाय नेट को बाय वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट रु 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया जडान को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आफ्नो लागि एक महीना फ्री इंटरनेट बाय नेट अब सबै कनेक्टेड।
1: नाक कान तथा घाटी रोग को उपचार सेवा अब सुवर्ण मेडिकल हल घोराही दाङ में।
2: नाक कान तथा घाटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुवर्ण बुढामगर द्वारा प्रत्येक दिन बिरामी चेक जाँच भइरहेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौ। सम्बन्धित रोगका बिरामीले समयमै सम्पर्क गरी आफ्नो रोगको पूर्ण निदान गर्नुहोस्।

0: बाय नेट को बाय वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट जो 2700 में खरीद गर्दा सोही इंटरनेट पैकेज नया जडान को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आफ्नो लागि एक महीना फ्री इंटरनेट बाय नेट अब सबै कनेक्टेड।
1: तपाईं यति बेला सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम ट्रिफिन टाइम। यदि तपाईँ पनि आफूलाई मन परेको गीत सुन्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 5784954 डायल गरेर आफूलाई मन परेको गीत सुन्न सक्नुहुन्छ।

0: प्रोडक्ट हरू कोकोनट सोकोनट भिटा मिल्क बटर प्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोटोको डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस
0: अडगुरी।

वाय नेट को बाय वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट रु 2700 में खरीद गर्दा सोही इंटरनेट पैकेज नया जडान को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आफ्नो लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वाय नेट अब सबै कनेक्टेड।

0: एक्सचेन्ज डेट एही डेट 3 गते देखि 8 गते सम्म ग्रेन एक्सचेन्ज मेला हुने स्थान डाङ निर्माण व्यवसायी संघको प्राङ्गणमा डीके पेट्रोल पम्पको ठिक उत्तरतर्फ घुराई 15 डाङ।
1: एक्सचेन्ज गर्न आउँदा बिल बुक अनिवार्य लिएर आउनु होला। थप जानकारीका लागि राप्ति अटो इन्जिनियरिङ बजाज शोरूम शहीद गेट घोराही डाङ। सम्पर्क फोन 082-562-423। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98578-301।

0: प्रोडक्ट हरू कोकोनट सोकोनट विटा मिल्क बटर फ्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चॉइस कोटो को डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस
0: अडगुरी।

राम राम सन्जे 5 बजे थारू भाषक मध्यपश्चिम खबरमा शालिकराम चौधरी हार्दिक स्वागत बा। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङसे जारी हुन राहदानी पासपोर्ट आप हुलाक सेवा मार्फत सम्बन्धित व्यक्तिको घर दैलोमा पुगिजा रहल सेवा गरेको समय खर्च बचत गर्न उद्देश्यले जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ ओ हुलाक निर्देशनालय दाङबीच आज द्विपक्षीय समझदारी पत्र एमओयू मा हस्ताक्षर हुलक हो। नेपाल सरकारको सरकारी सेवा घरमा जो उपलब्ध हुन करिना नीति अनुरूप शुरू करगिल सेवाका लागि सेवाग्राही से प्रति राहदानी 55 रूपियाँ दस्तूर बुझाई पर्ने बा। समझदारी अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय से तयारी हुलक राहदानी का सूची ओ भरपाई सहित हुलाक हन जिम्मा लगा जिने बा। हुलाक से ऊ राहदानी क्र बुझकन 15 दिन भित्र सुरक्षित तबर से सम्बन्धित व्यक्ति का हाथ पुगा जिना प्रावधान धरगिल्बा। प्रमुख जिल्लाधिकारी विश्व प्रकाश अर्याल निमित्त हुलाक निर्देशक शोभारम बस्नेतद्वारा हस्ताक्षरित उक्त समझदारी से नागरिक हन राहदानी लिह पुनः कार्यालय धाइपर्ना बाध्यता अन्त्य कैराखल। यदि घरमा मनै निभिटगिलसे वा फोन सम्पर्क हुइन सक्लसे उसिन राहदानी 15 दिन भित्र पुनः जिल्ला प्रशासन मजो फिर्ता कर्जिने बा। यी व्यवस्था से सरकारी सेवामा नागरिक से पहुँच सरल ओ सुशासन क अनुभूति करिना विश्वास लेगिल बा। दाङको घोराइसले सञ्चालन हुइति अहिलेको रेडियो मध्यपश्चिम 91.4 MHz आफ्नो 21 औं स्थापना दिवसको अवसर पार्कन रक्तदान कार्यक्रम कैराखल। दाङ सूचना तथा संचार सहकारी संस्था लिमिटेडले संचालित रेडियो मध्यपश्चिमले आफ्नो वार्षिक उत्सवको अवसरमा 3 दिने कार्यक्रम अन्तर्गत आज पहिलो दिन रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गर्लक हो। आज बिहान आयोजना गरिलक रक्तदान कार्यक्रम रेडियोका अध्यक्ष मधुसूदन वैद्यले सामाजिक रक्त उत्तरदायित्व वहन गर्न अस्पतालमा हुन रगतको अभाव हुन दान्चे हुलसिफे कम गर रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना करगिलक बटवारा क्लब। रक्तदान कार्यक्रममा संचालक समितिका सदस्य एकनारायण पौडेल, उपाध्यक्ष सुदर्शन रिजाल, सुशील अधिकारी, मुक्ति निपाने, रेडियोको प्राविधिक शालिकराम चौधरी, समाचार शाखाका शान्त कुमार बुढा मगर, बाबुराम पाण्डे, हेमन्त चौधरी लगायतले रक्तदान कर्लक कार्यक्रम संयोजक सुदर्शन रिजाल जानकारी दिएर रेडियोले वार्षिक उत्सवको अवसरमा वैशाख 31 गते छलफल तथा अन्तर्क्रियाको जेठ 1 गते समापन समारोहको आयोजना गर्जिना रेडियो संचालक समितिका अध्यक्ष मधुसूदन वैद्य जानकारी दिएर 2062 पुष 28 गते से परीक्षण प्रसारण करगिलक रेडियो मध्यपश्चिम 91.4 MHz 2063 जेठ 1 गते से नियमित प्रसारण करल रह। रेडियो से बिहान 5 बजे से संध्या 10 बजेसम्म समाचार विषय वस्तुमा केन्द्रित बहस ओ अन्य मनोरंजन कार्यक्रम संचालन करती आ राखल। ओ नेपाल निवृत्त शिक्षक समाज राप्ती गाउँपालिकाको 4 परिषद आदर्श माध्यमिक विद्यालय लालमटियामा सम्पन्न हो रहल। राप्ती पालिकाको अध्यक्ष कृष्णगिरीको अध्यक्षता तथा जिल्ला अध्यक्ष गोविन्द पौडेल तथा जिल्ला उपाध्यक्ष पद्मप्रसाद शर्मा ओ आदर्श माध्यमिक विद्यालय लालमटियामा प्रधानाध्यापक खेतुलाल पौडेलका विशिष्ट आतिथ्यमा कार्यक्रम सम्पन्न भइलक हो। परिषदका बैठकमा संस्थाका सचिव रुद्रमणि शर्मासे संगठनिक प्रतिवेदन ओ कोषाध्यक्ष देवीराम शर्मासे आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करल रह। दुनू प्रतिवेदन उपर छलफल करती परिषदले आगामी कार्यदिशा तय कैराखल। कार्यक्रममा शुभकामना मन्तव्य धरती मावि पत्थर र गढवाक प्रधानाध्यापक वसन्त राज घिमिरे, मावि शिशुन्याका प्रधानाध्यापक विनोद कुमार गुप्ता, छोटकी शिशुन्याका आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक हरिचन्द्र चौधरी, लमैनगर सचिव गोविन्दराज रिजाल, गढवाक सचिव खगराज शर्मा ओ आजीवन सदस्य रमेश कुमार अधिकारी लगायतले निवृत्त शिक्षकनक हकहित ओ समाज सेवामा संस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण हुनामा जोड दिएर ओ अवसरमा लौ सदस्यकनकलाई आजीवन सदस्यको प्रमाणपत्र ओ समाजको लोगो अंकित ब्याज वितरण करगिल रह। कार्यक्रमको शुरूआत उपाध्यक्ष युवराज प्रसाद पौडेलको स्वागत मन्तव्यसे शुरू हिलक रह। कलशले सहजीकरण सचिव रुद्रमणि शर्मा करल रह। हुइठा ताजुक थारू भाषक मध्यपश्चिम खबर अत्रह कालसंज्याफे थारू भाषक मध्यपश्चिम खबर सुन सेक्नी बाटी अखसक खबर मसे समाचार कक्ष कसकको संग्रहणसँग म शालिकराम चौधरी विदाई टू रेडी मध्यपश्चिम उनिटी रवि राम राम।

0: बेस्ट प्रोडक्ट हरू कोकोनट चोकोनट भिटा मिल्क बटर फ्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल विथ बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोदोको डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस
0: अडगुरी।